0: दूर, बहुत बहुत।
1: पगले की ना बोले, छगले की ना खाए, पगले की ना बोले, छगले की ना खाए।